How dare you? खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की, किस हाथ से तुमने मुझे छुआ? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पे। क्यों बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो? दूर रहो मुझसे।